0: कक्षां भक्ति सार वचन है, कक्षां भक्ति सार वचन है।
1: Ida vai soha kenda soha baha.